तय न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: Come on, Riya.
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी है। भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: wow.
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए।
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: okay,
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: okay, that's it.
2: Check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on handpicked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
3: 20 minutes after 6 o'clock right here on Sunrise Radio's Breakfast Show or Request Hour. Let me know what song you want to hear. Just give me a call, drop me a WhatsApp. It is Breakfast with Paul Shah.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Taken from his album Ek Tha Raja, Badshah featuring Arijit Singh, Soulmate. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूजडे द 26th की सुबह शबनम साही के साथ. देवेंद्र इन ग्रीनफर्ड कहते हैं स्टेइंग इन अ कूल स्विमिंग पूल दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू एब्सोल्युटली, बट हाउ लॉन्ग कैन यू पॉसिबली स्टे इन द पूल फॉर, आई मीन हाउ लॉन्ग, नॉट द होल डे श्योरली. सनराइज पर इस घंटे का योर चॉइस,
1: लिसनर्स चॉइस, ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday 9:25 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर टेकन फ्रॉम वॉर टू, जुबिन नौटियाल. ढलता सूरज रास्ता बतला जाएगा, जीते जीते हमको जीना आ जाएगा. अरे ना भी आया तो किसी का क्या जाएगा, जीते जीते हमको जीना आ जाएगा. चांद मेरा दिल इज द बिग मूवी आउट दिस वीक, राइट? इट्स ऑलरेडी बीइंग ट्रोल्ड एंडलेसली फॉर अ लिटिल क्लिप दैट दे ड्रॉप्ड द अदर डे. आर यू एक्साइटेड? विल यू बी वॉचिंग? मेरे ख्याल से मेकिंग अप आवर माइंड्स बिफोर वॉचिंग द फिल्म, दैट वुड बी अ बैड आइडिया आई थिंक.

0: चीजें हैं। अगर तुम की सुबह शबनम साही के साथ a bit of this, a bit of that.
1: With the egg-free cake box. This Eid celebration sweeter with cake box. From fresh cream celebration.

0: in. GDK, kebabs done right.
1: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. नाउ सनराइज रेडियो हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट चैनल. यू नो दैट राइट? इट्स कॉल्ड द सनराइज कॉर्नर शॉप पॉडकास्ट, ब्रिंगिंग यू इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन बिजनेस, पब्लिक सर्विस एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट. यू कैन वॉच और लिसन नाउ ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, ऑन ऑल अदर मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स एज वेल. यू जस्ट हैव टू सर्च सनराइज कॉर्नर शॉप पॉडकास्ट, ऑल्सो अवेलेबल नाउ एट sunriseradio.com and on the Sunrise Radio app. Don't forget to subscribe and follow the channel for more inspiring conversations. Right now, Rafi Sahab and Asha Ji on Sunrise. Good morning.

किस्मत से तुम टुकड़े दिल हमको मिले. नाइस सॉन्ग नंबर वन. Got an old school this hour from the year 2000. Actually, song number two is also from the year 2000.

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, नीना, अंजू, मंजू या

0: सरदार मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: When you can't get enough of the classics, switch to Sunrise Retro. Wall-to-wall retro Asian hits, 24 hours a day, 7 days a week. Sunrise Retro, London's retro Asian mix. Available on DAB in London, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.